मेरी पिस्तौल के अंदर किसी भी एक गोली पर कोई पैगाम लिखा है, तुम्हारा नाम लिखा है।

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे?

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

आज प्रभु आएंगे, आज सेवा का अवसर मिलेगा, जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। भगवान राम पहुंचे, केवट से कहा, केवट हमें इस नदी के उस पार उतार दो। केवट ने कहा, नहीं प्रभु, एक शर्त है। प्रभु ने पूछा, शर्त क्या है? केवट ने कहा, प्रभु पहले अनुमति दें

मेरी नाव को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। प्रभु मुस्कुराए, केवट की चतुरता समझ गए, अनुमति दी। केवट ने प्रभु के चरण पखारे,

राम सोचने लगे कि केवट का तो यही काम है, इसी से इसका परिवार चलता है, तो इसे कुछ मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन देते क्या, कुछ था ही नहीं। बनवासी राम सब छोड़कर आए थे। इशारा किया सीता जी को,

आज तो सेवा का अवसर मिला है। भगवान राम बोले, केवट ले लो, ये मजदूरी है और मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते। केवट बोला, प्रभु ये शर्म की बात नहीं है, ये तो एक नियम है, आपसे नहीं ले सकता। भगवान राम ने पूछा,

0: excuse me.
1: Yes.
0: Hello.
1: Hi.
0: मैं ना थोड़े नाल एक गल करनी चाहुंदा सी.
1: दसो.
0: मैं कहना सी तुसी ठीक ठाक हो?
1: Yeah, of course.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
4: गलियां कुमी, ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
5: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
4: चाचा, केड़ा चाचा?
5: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्हाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी, नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना, कानस लाने ना 1 पौंड, छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
5: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
1: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
6: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935
4: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
5: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
4: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
5: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446
6: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
7: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first had

खुदा ने पाला, कोई उसे क्या मारे जिसका रब है रखवाला। वो अपने मददगारों का मुहाफिज है अल्लाह।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास, ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details call Benny 07901 831 165, Raman 078 341 77866, Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: गिरिया कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
4: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 01274735043।
5: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
6: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

सुनहरी रंग अन्ना खुद तूता दिया छा मरिया करी रहा बोलते मैं दे पोले पैर टका बिड़का रख दे संघ दे झिझक

0: East Lancashire and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.
1: कुल्ला नफसेन जायकतुल मौत
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
3: Have you noticed the way fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है, जो कि 103.2 FM और 100.6 FM पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है। अगर आप DAB पे सुनना चाहें तो आप ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हेलीफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अक्रिंगटन एंड मिल्टन कीन्स में सुन सकते हैं। अगर आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हैं, आप सनरा रेडियो को सुनना चाहें तो आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस रहेगा www.sunriseradio.fm पर आप बड़ी आसानी के साथ समाज फरमा सकते हैं। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले हमारी जानिब से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। तो दोस्तों, चलते हैं प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं।
1: Hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में। इसके साथ ही चलते हैं दोस्तों, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 11:14, यानी कि 11:14। तो चलते हैं कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम।
2: नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
4: Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

जी दोस्तों अभी आपने विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। आप चलते हैं जनाब अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए पेश करता हूं। तो चलते हैं, सुनते हैं और इंजॉय करते हैं इस गीत को।

तो अभी आपने कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार की आवाज़ों में प्यारा सा गीत सुना। अब चलते हैं कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत और होगा। नदीम मंसूर साहब, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। माल चाहते हैं, आपकी कॉल में ले नहीं पाया, तो जनाब आपके नाम करते हैं गीत कमर्शियल के बाद जो होगा। और वाजिद भाई एड्रेस फिर से आपके नाम भी करते हैं, शुक्रिया फ़ोन करने का। और ग़ुलाम भाई आपके नाम भी करते हैं और दीगर

जी दोस्तों, अभी आपने दो प्यार भरी आवाजों में, यानी कि अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में ये प्यारा सा गीत सुना। तो अब्दुल कयूम साहब, राइजिंग हॉल से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब। आपने तमाम सुनने वालों को सलाम अर्ज किया और सबके लिए एक प्यारा सा गीत सुनना चाहा, तो आने वाला गीत आपकी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम। उसके बाद खान भाई, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम भी ये गीत करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा। एक बार फिर शुक्रिया खान भाई फ़ोन करने का और ढेर सारी दुआओं का। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। और उसके बाद नदीम मंसूर साहब आपके नाम भी करेंगे और इसी गीत को मलिक इम्तियाज़ साहब, इकमाज, मुनीर, वसीम, उमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, उमेर, बाबर और इफराज आपके नाम भी करेंगे और गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम भी करेंगे और इसी गीत को साइमा जी आपके नाम भी करेंगे और आजरा जी आपके नाम भी करेंगे।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब इसके साथ ही टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:45, यानी कि 11:45, तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। और कमर्शियल के बाद आप एक प्यारा सा गीत सुनेंगे। इरा खान साहब, आपके नाम तारिक जुल्फी साहब, फ़ोन करने का शुक्रिया, आपके नाम भी करेंगे। और अब्दुल क्यूम साहब, फ्राइजिंग ऑल वाले, और ख़ान भाई, मंसूर भाई, वाजिद भाई, और जनाब चौधरी मनीर साहब चक्की वाले, चौधरी मुजफ्फर साहब और ग़ुलाम भाई और दीगर तमाम दोस्तों के नाम ये प्यारा सा गीत होगा। तो आइए जनाब सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत होगा, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय भी किया होगा। आप क्योंकि हमारे पास जो टाइम है बहुत कम रह गया है, चलिए ऐसा करते हैं छोटा सा गाना जो आप दोस्तों के लिए पेश कर देता हूँ। हीरा साहब, अभी आप फ़ोन कर देते, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का, और आप के नाम भी गीत और गुलाम भाई और दीगर तमाम दोस्तों के नाम ये गीत करते हैं, सुनिएगा।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप दोस्तों ने पसंद किया होगा और कोशिश होगी कि इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करने की कोशिश करूं। तो अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 01274306666। तो चलते हैं दोस्तों, अब आप दोस्तों के लिए हिट ऑफ द आवर पेश करते हैं और इस हिट ऑफ द आवर को एंजॉय करते हैं। आप सभी सुनने वालों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, एक मस्ती गीत आप सभी सुनने वालों के नाम।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही मस्ती भरा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और इसके साथ ही चलते टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियों के मुताबिक टाइम हुआ है 12:14, यानी कि 14 मिनट्स पास्ट 12। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानेब। तो कमर्शियल के बाद एक ऐसा गीत होगा जो गुलाम भाई का स्टाफ जो है हमेशा उसकी फरमाइश करता है, तो आज मैं खुद ही उनके लिए लगा देता हूँ, सो ताकि वो सारे खुश हो जाएं, तो काम करें सही तरह। तो जनाब उनके नाम और ज़रीना साहब, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। और इसी गीत को मुना जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

जी दोस्तों, अभी आपने आनंद राज आनंद की आवाज में प्यारा सा गीत सुना और गुलाम भाई के स्टाफ का ये फेवरेट गीत था, बल्कि जिया जी का ये फेवरेट गीत था और उनकी जानिब से ये गीत नजर किया था जनाब मलका जी की तरफ और भेजा था, खासकर जनाब आयशा जी और रानी की तरफ भी। तो गुलाम भाई, फोन करने का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप दोस्तों को खुश करने के लिए प्ले किया था। तो एक चलते हैं, एक और मस्ती भरा गीत सुनते हैं, आप सभी दोस्तों के नाम करते हैं।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि जनाब कमर्शियल का टाइम आ गया है। तो कमर्शियल के बाद गुरदास मान की आवाज़ में एक प्यारी सी कवाली सुनेंगे जनाब, और वो नज़र करना चाहेंगे अमरीन साहबा आपके नाम, और इसी कवाली को नज़र करना चाहेंगे नजमा साहबा, इफ़त, नाजिया, हमीदा, रुबीना, बुशरा, इकरा, ताजीम, जाहिदा और साइमा आपके नाम भी करेंगे। और आपके साथ साथ जनाब मलका जी, जिया जी, आशा जी, रानी जी आपके नाम, नवीद भाई आपके नाम, राम भाई और दीगर दोस्तों के नाम करते हैं। और स्पेशली जनाब इस वक्त काम कर रहे हैं मलिक इम्तियाज़ साहब, इकमाज, मनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह देता, उमेर, बाबर और इफराज। और साथ में इसी को नज़र करना चाहेंगे इस वक्त बाबर शाह पे तीन शहज़ादे काम कर रहे हैं, बशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं जनाब, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद जनाब गुरदास मान की सुरीली आवाज़ में इस रिलीसी कवाली सुनेंगे, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।

0: जी दोस्तों अभी आपने गुरदास मान की सुरीली आवाज में सुरीला सा ये कवाली सुरीली सुनी और दोस्तों अब क्या है कि वक्त हमें बता रहा है कि जनाब एक बार फिर कमर्शियल का टाइम आ गया है और कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराने गीत की बारी आती है और वो पुराना गीत जो है वो सभी दोस्तों के नाम होगा, हीरा खान साहब के नाम, तारिक ज़ुल्फ़ी साहब के नाम, वाजिद भाई एडर्सफील्ड में उनके नाम और जनाब अपने ग़ुलाम भाई हैं उनके नाम, मलिक इम्तियाज़ साहब शुक्रिया आप फ़ोन कर रहे हैं तो आपकी पूरी टीम के नाम भी करेंगे और उसके बाद जनाब जो हमारे प्यारे दोस्त हैं जनाब चौधरी मनीर साहब चक्की वाले उनके नाम भी और चौधरी मुजफ्फर साहब के नाम भी और दीगर तमाम दोस्त जो इस वक्त सन्ना रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अब कमर्शियल की जानेब और कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक प्यारा सा गीत और पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: दोस्तों चलते हैं अब कमर्शियल की जानेब, टाइम बताते हैं आपको एक 12:42 यानी कि 12:42। तो चलिए लता जी और शबीर कुमार की आवाज़ों में प्यारा सा गीत सुनेंगे।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
4: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
6: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

जी वाह, क्या बात है इस गीत की। और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो जनाब ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था गीत। और अब जनाब हम जो हैं वो अगले गीत की जाने बढ़ेंगे। और गुलाम भाई शुक्रिया फ़ोन करने का। और मलका जी आपने कहा कि जिया जी के लिए आप जो गीत मैं अभी प्ले करने जा रहा हूँ इसकी फरमाइश की आपने, और एक और गीत की भी फरमाइश की, तो वो तो अभी नहीं लग सकेगा क्यों खबरें आ जाएंगी, खबरों के बाद मैं वो गीत आप के लिए ज़रूर लगाऊँगा। तो अब मलका जी आपने जिया जी के लिए गीत सुनना चाहा और ये मेरा फेवरेट गीत भी है, तो अच्छा हुआ कि आप लोगों ने इस गीत की फरमाइश की। और ये जिया जी को क्यों आप लोग तंग कर रहे हैं, कभी ओए राजू प्यार ना करो आप दिल दे दिया है, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आप लोग जिया जी के साथ। एनीवे आशा जी और रानी जी आपके नाम भी, और हमारे प्यारे दोस्त चौधरी मनीष साहब चक्की वाले हैं उन्होंने भी फ़ोन किया, उनके नाम भी करेंगे और चौधरी मुजफ्फर साहब के नाम भी करेंगे। और हीरा खान साहब आज आपने बहुत दफ़ा फ़ोन किया जनाब, और जब भी आपने फ़ोन किया मेरी आपसे बात नहीं हो पाई। मैं अभी जब आप फ़ोन कर रहे थे तो मैं गुलाम भाई से बात कर रहा था, तो थोड़ी बात लंबी हो गई क्योंकि फिर मलका जी फ़ोन पे आ गई, उन्होंने फरमाइश कर डाली, तो इसलिए आपकी कॉल नहीं ले पाया हूँ मैं, तो जनाब माजर चाहता हूँ। तो बड़ा प्यारा गीत है, मेरा भी फेवरेट गीत है और बड़े लोगों का ये फेवरेट गीत है। और मेरे ब्रदर लॉ जो होते थे ना, वो जब भी इंग्लैंड आते थे तो हमेशा जब भी मैं प्रोग्राम कर रहा होता था वो फ़ोन करके हर मेरे प्रोग्राम में इसी गाने की फरमाइश करते होते थे। मैं कहता था यार तो हेल भाई कोई और गीत की भी नहीं नहीं नहीं यार बस वो प्लीज लगा दो ना। तो बड़ा प्यारा गीत है, जब आप सुनेंगे तो आप सभी दोस्तों को पता चल जाएगा किस गीत की बात हो रही है। तो चलते हैं जनाब, सुनते हैं आनंद राज आनंद की प्यारी सी आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आ गए हैं जनाब। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे और कोशिश होगी जनाब इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करने की कोशिश करूं। तो चलते हैं जनाब, प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत जो है वो मलका जी आपने जो दूसरे गीत की फरमाइश की थी अनूद अपड़वाल की प्यारी सी आवाज़ में, वो आपको हिट ऑफ द आवर की शक्ल में पेश करते हैं। आप गुलाम भाई, नवीद भाई और जिया जी, आशा जी, रानी जी के लिए गीत सुनना चाहती हैं तो उनके नाम करेंगे। और चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले जनाब, शुक्रिया आपके नाम भी। और हमारे प्यारे दोस्त चौधरी मुजफ्फर साहब, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया। आपने अपने तमाम दोस्तों को सलाम अर्ज किया, सब के लिए एक प्यारा सा गीत सुनना चाहा। तो जनाब चलते हैं हिट ऑफ द आवर की शक्ल में ये गीत सुनते हैं मलका जी की पसंद पे।
1: The Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: जमाने के देखे हैं रंग हजार नहीं कुछ सेवा प्यार के। अनुदा पडवाल की प्यारी सी आवाज में दोस्तों आपने प्यारा सा गीत सुना, सड़क फिल्म से लिया हुआ गीत था और मलका जी ने इस गीत की फरमाइश की थी जी अजी के लिए। तो जनाब अब चलेंगे टाइम चेक कर लेंगे।
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं इस वक्त 1:10 यानी कि 10:01। तो जनाब चलेंगे अब कमर्शियल तो अभी थोड़ी दूर है, प्यारा सा एक गीत सुन लेते हैं मेरी जानिब से सभी सुनने वालों के नाम।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद जो आने वाला गीत है दो प्यार भरी आवाजों में, मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम।
1: 24 hours a day.
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
3: Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yog Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra, 07977-201226. Mirdosh Kumar, 07899-055525. Gurkirit, 07886-545970. Usha, 07931788-062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

जी दोस्तों, एसपी बिलासपुर वानियम और अलका यज्ञ की आवाजों में आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। यकीनन आप साथियों को पसंद आया होगा। तो चलिए एक और प्यारा सा गीत आप दोस्तों के लिए पेश करता हूं, जो इस वक्त सनलाइट रेडियो की निशरियात को सुन रहे हैं।

जी दोस्तों, अभी आपने कुमार सानू की आवाज में गीत सुना। गीत इतने अच्छे होते हैं, मजा आता है सुनने में, लेकिन बीच में कुछ ऐसे बोल आ जाते हैं जो फिर पूरे गीत पर जो है वो पानी फेर देते हैं जनाब। जैसे इस गीत को आपने सुना, मैंने कभी गौर से नहीं सुना, पूरे ही बोल तो कभी नहीं सुने, थोड़ा सा सुनता होता हूँ फिर अपने काम में लग जाता हूँ। तो आज इत्तफाक हुआ सुनने का, तो मुझे बड़ा फील हुआ कि यार ये इतना अच्छा गाना था, इसमें ये बोल क्यों डाल दिया इन लोगों ने कि रब से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। खुदा के बंदो, रब को भी वो हो क्या बात करें। तो चलिए जनाब, पर गीत हैं बजाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मुझे समझ नहीं थी। चलिए अब गीत बज चुका, अब क्या हो सकता है। तो जनाब अब कमर्शियल का टाइम हो चुका है, और कमर्शियल के बाद आप एक प्यारा सा गीत सुनेंगे। और जनाब अनीस दाहूद साहब, आपने लेस्टर से फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब, और आपने गीत की फरमाइश की, कल के प्रोग्राम में आपकी फरमाइश पूरी कर दूंगा। तो फ़िलहाल आने वाले गीत से दिल बहलाइएगा, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि कोई रोने धोने वाला गीत हो। तो कल फिर प्ले कर दूंगा, आज प्रोग्राम ख़त्म होने में आधे घंटे से भी कम वक्त रह गया है, तो यार कोई दुखी ना ही सुने तो अच्छा है। थोड़े प्यार भरे गीत सुने और आप भी खुश रहें, मैं भी खुशी खुशी जाऊं। तो अनीस दाऊद भाई, आपके नाम करेंगे ये गीत इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगेगा। और जनाब इसी गीत को कमल साहब आपके नाम भी करेंगे, और गुलाम भाई आपकी जानिब से स्टाफ के नाम भी करेंगे, और ये बहुत ही प्यारा गीत है। तो आबिद भाई आप भी सुन रहे हैं जनाब, तो आपके नाम भी करते हैं और आप के स्टाफ के नाम भी करते हैं। शुक्रिया आप फ़ोन किया था, मेरा हाल पूछा, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो चलते हैं जनाब, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

जी दोस्तों, अभी आपने साजन सरगम और उदित नारायण की आवाज़ों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। तो इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि जोहर की अज़ान का टाइम हो गया है। हमारे सिस्टम में तो नहीं आई अज़ान, लेकिन हम प्ले कर देते हैं क्योंकि हमारे जो टाइम टेबल के मुताबिक इस वक्त अज़ान का टाइम है। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं अज़ान, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं।

0: अभी आपने जनाब जोहर की अजान सुनी और अब वक्त हमें बता रहा है कि इसके साथ ही कमर्शियल का टाइम भी हो गया है, तो जनाब चलेंगे अब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद आपको पता है कि सदाबहार पुराने गीत की बारी आती है और कमर्शियल पे जाने से पहले हम चाहेंगे कि टाइम चेक कर लें।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 1:44, यानी कि 44 minutes past 1। तो कमर्शियल के बाद जनाब गीत सुनेंगे। लेस्टर में अनीस दाऊद भाई सुन रहे हैं, उनके नाम चौधरी मुजफ्फर साहब, चौधरी मुनीर साहब, चक्की वाले हीरा साहब और गुलाम भाई, मलिक इम्तियाज साहब, आपकी पूरी टीम, वाजिद भाई और ताजुल्फी साहब, हीरा खान साहब और दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की नशरात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद लता जी की आवाज़ में सदाबहार पुराना गीत, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं, सुनते रहिएगा।

0: पकड़
1: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 01274735043।

लता जी की सुरीली मीठी आवाज में दोस्तों आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इस गीत के साथ ही जनाब वक्त बड़े नाजुक मोड़ पे आ गया है और जब हम आते हैं बड़ी खुशी से आते हैं कि आप दोस्तों के लिए प्रोग्राम पेश करेंगे और फिर सफ़र भी देखते हैं कि लंबा सफ़र होता है 3 घंटों का, लेकिन जब हम यहाँ बैठते हैं तो फिर जनाब सफ़र का पता ही नहीं चलता। ऐसे लगता है कि हमने 15-20 मिनट या आधा घंटा हुआ होगा प्रोग्राम करते हुए और ये ऐसे हो जाता है, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता है। तो दोस्तों उम्मीद रखता हूँ कि आज का प्रोग्राम आप दोस्तों को पसंद आया होगा। आप दोस्तों ने जो शुरू से हमारा साथ निभाया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन दोस्तों ने फ़ोन किए प्रोग्राम में शमूलियत की उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों अभी इस पुरानी कवाली लगा के जा रहा हूँ आपके लिए प्रोग्राम को ख़त्म करके, तो उम्मीद रखूँगा कि अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह जनाब 11 बजे होगी। तब तक लिए आमिर शहज़ाद को इजाज़त दीजिएगा। हमारी जानिब से खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

नहीं पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

सत्यकाल एंड वेरी वेरी गुड डे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन अभी तक खूबसूरती से गुजर रहा होगा। और मेरी दुआ है कि आप हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें अपनों के साथ साथ रहें, आमीन। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप सबके दुख दर्द, बीमारियाँ, परेशानियाँ जो भी हैं उनको दूर फरमाए, बहुत जल्द आपको सेहतियाब, तंदरुस्ती और आपकी मुश्किलात को आसान कर दे, आमीन। मैं हूँ शहनाज मंसूर, आपके साथ रहूँगी अगले 3 घंटे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ ज़रूर निभाएंगे। मोहब्बतों, चाहतों और दुआओं का सफ़र है, आपके साथ साथ हमें गुजारना है, आपके साथ साथ चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप भी हमारा साथ देंगे।

0: बिन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: आर पार।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
5: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
6: Have you noticed the way fans shout at football matches?
7: Oh, wake up!
6: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

मुझे उम्मीद है कि आपको आज का शो अभी तक जो भी हमने पेश किया गीत वो आपको पसंद आ रहे होंगे और यकीनन आने वाले गीत भी आपको अच्छे लगेंगे। बहुत ही खूबसूरत और प्यार भरे गीत हैं जिन्हें हम आपके लिए लेकर आए हैं और खूबसूरत गीतों का खजाना है जिसे लौटाएंगे हम आप पर। चाहेंगे आपका खूबसूरत सा साथ और बिताएंगे इस खूबसूरत सफर को आपके साथ साथ।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रैडफोर्ड 723030।
3: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.
6: Classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

तमाम साथियों का, भाइयों का, बहनों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत बन चुके हैं, जिनका साथ और प्यार हमें मिला। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपकी मशकूर और ममनून हूँ कि आप अपने कीमती वक्त से चंद लम्हे हमें नवाजते हैं। और आपका साथ हमेशा बहुत प्यारा होता है और आपके साथ साथ ये सफर और भी खूबसूरत और हंसी हो जाता है। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है, आपके साथ का और प्यार का। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।

कमर्शियल्स और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं, खुश आमदीद वेलकम और जी आई एनु कहते हैं। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस घंटे में भी और अगले घंटे में भी आप हमारा साथ जरूर निभाएंगे जैसे कि निभाते आए हैं। आपके साथ साथ ये सफ़र बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है और आप हमारे प्रोग्राम की जीनत होते हैं और आप हमारे प्रोग्राम की रौनक होते हैं। जब आप आते हैं तो ये महफिल और भी पुर रौनक हो जाती है और हमारा सफ़र खूबसूरत और हसीन बन जाता है। आपका शुक्रिया।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
3: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव विद आनंद मूर्ति गुरुमा इन बर्मिंघम। Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

बातें हैं सनराइज रेडियो पे 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे। इसके अलावा आप हमें सुन पाते हैं डीएबी के जरिए ब्रैडफोर्ड, लीड्स, मैनचेस्टर और इर्द गिर्द के इलाके में, और 100.6 एफएम पे आप हमें सुनते हैं काल्डर डेल में। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं सनराइज रेडियो को सुनने के, आप के जरिए भी हमें सुन पाते हैं और नेट पे भी, गूगल के जरिए भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहें जहाँ चाहें आप हमें सुन पाते हैं सनराइज रेडियो को 24 घंटे। और मैं हूँ शहनाज मंसूर, आपके साथ साथ हूँ खूबसूरत गीतों के साथ। आपका शुक्रिया।

मुझे यकीन है कि जो गीत आपने सुना जरूर आपको अच्छा लगा होगा और इसके साथ साथ आपकी बहुत सी यादें ताज़ा हो गई होंगी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि जब आप गीत सुनते हैं तो उसके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। यही नहीं कि हम गीत सुनते हैं बल्कि ये हमें वहाँ वहाँ पहुँचा देता है जहाँ हमने पहली बार ये गीत सुना था, और ऐसे लगता है कि हम फिर से उसी जगह पर लौट आए हैं और वही दोस्त और वही साथी फिर से हमारे साथ बैठे हैं और इस गीत का मज़ा ले रहे हैं, और इस गीत का मज़ा और भी दुगना हो जाता है। जैसे कि ये आने वाला गीत भी हम आपके लिए लेके आए हैं, यकीनन आपकी यादों को ताज़ा करेगा और आपकी दिल की धड़कनों को भी तेज करेगा।

प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में हमने कदम रखा है। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। जी आयान खुशामदीद, वेलकम। अभी तक साथ निभाने का, हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। हमारा और आपका साथ बरसों से चला आ रहा है। आपका प्यार और आपकी दुआएं हमेशा हम पाते आ रहे हैं और अब तो इसकी आदत सी हो गई है। आपका आना हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर खुदा ना खास्ता आप कभी ना आए किसी वजह से, तो आपकी कमी बहुत महसूस होती है। तो खुदा रहा ऐसा मत कीजिए, जब भी आपको मौका मिले ज़रूर आइएगा और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और अपनी खैरियत से आगाह करते रहिएगा, क्योंकि आपका प्यार, आपकी दुआएं और आपका साथ हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमेशा हमेशा आप ही के साथ मज़ा आता है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
3: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra, 07977201226. Mirdosh Kumar, 07899055525. Gurkirit, 07886545970. Usha, 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown up by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
6: Because when we work together, it all adds up.
7: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
8: गलियां गलियां कुमी ते पैरां नी जुतियां वी कसी गियां पर सस्ता सोना नी मिलिया।
9: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
8: चाचा केड़ा चाचा?
9: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
8: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
9: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 012744888935।
10: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
0: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
10: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
0: एशिया सुपरस्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 012744644446।

0: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organisation's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.
1: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
2: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
3: We're not having that, are we?
2: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
6: Because when we work together, it all adds up.
7: So come on, you lot. Search Let's Save Water. तेरी
8: गलियां गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
9: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना
8: चाचा केड़ा चाचा
9: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकन तीला सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
8: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
9: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935
10: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
0: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
10: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
0: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा, चावल, दालां, गोश्त, सब्जियां, हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
5: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जानेया ते सारी शॉपिंग करके ले आनेया। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
4: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
5: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
6: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
7: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
8: We're not having that, are we?
7: No. Oi, hear that? It's water and cans.
9: And fix those drips and drops.
10: And take shorter showers, yeah?
11: Because when we work together,
12: it all adds up.
13: So come on, you lot. Search Let's Save Water.

भी विश्व में छाई है हिंसा और नफरत की आंधी, तो अमन चैन फैलाने को जग में अवतरित फिर क्या होंगे गांधी। जब तक दहशतगर्दी इस दुनिया में जिंदा रहेगी, तब तक अपने बापू की आत्मा शर्मिंदा रहेगी, शर्मिंदा रहेगी।

0: पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 3535. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043।
4: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा, चावल, दालां, गोश्त, सब्जियां, हर चीज लेन जाओ। ते अद्धा दिन लग जाना है।
5: तुसी फिकर ए ना करो जी। हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है, जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
4: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
5: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पी आए आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरू थे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जानेया ते सारी शॉपिंग करके ले आनेया उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: Plus, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055, we could be short by 5 billion litres a day.
1: Hold on, miss. 2055? We'll be grown ups by then.
2: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
4: And fix those drips and drops.
5: And take shorter showers, yeah?
6: Because when we work together,
7: it all adds up.
8: So come on, you lot, search Let's Save Water.
9: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पी आए आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
10: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे
9: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
10: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: quality home to rent.
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जानेया ते सारी शॉपिंग करके ले आनेया उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446